नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय

तु वैष्णवुल शंभुंडंतु शैवुल सदा उल्लासंगुन कोल्वा उल्लासंगुन कोल्वा एल्लरकु आयुर्भोग भाग्यादि संपल्ला।

आधार ये करम माता पिता बंधु सख सब पिता मना जनर जीवन घन ये करम भक्त जनर जीवन घन ये करम।

आधार ये कराम माता पिता बंधु सख सब पिता मना जन जीवन घन ये कराम भक्त जन जीवन घन ये कराम

साईराम, माय हम्बल प्रणाम्स टू भगवान श्री सत्य साई बाबा. इट्स रियली ग्रेट हॉनर फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर एंड परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ भगवान श्री सत्य साई बाबा. आई एम एवर ग्रेटफुल टू स्वामी फॉर हैविंग गिवन अस दिस काइंड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. साईराम.

फुल प्रणाम्स टू भगवान श्री सत्य साई बाबा और इट्स रियली ग्रेट हॉनर फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर एंड परफॉर्म